हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
3: Jildi Allergy aur Kharish ke liye mufeed hai
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News
5: Brought to you by
6: Sona Urea Granular Mittiye jo maan vadhaye
4: Aap sun rahe Ab aap sunenge GAFM Network पर KTN News
5: Brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मां
7: ईरान आने किते जो बदमाश ना आए रहो आपना और मुस्ते अमेरिका जो मुकमिल कंट्रोल आए मानू अमेरिके बेरिया जे नाकाबंदी के लो जी भित कुट कोठी रहा आइन ईरान इन लोई भित के कुछ भी नथो करे सके पासना इनकलाब के भी खत्म करे छो हाँ वे फरार थी रहा है ईरानी की आदत बेयकीनी जो शिकार है अमेरिकी सदर जी नई दवा सामू अची वही ट्रंप है ईरान वट कूड़ी खबरों का सिवाय कुछ भी ना महंगाई की शरह 300 सैकड़ो है हालत अजा भी बदतर थी बलोचिस्तान के इलाके सोरा में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन है बारूदी मवाद जा धमाका 18 दहशतगर्द मारजी वया 3 शहरी भी शहीद पाक फौज जा ब जवान शहीद जख्मी ISPR मौजी बारूद से भरल गाड़ी तेल तैयार करण दौरान जोरदार धमाको थियो जै दौरान 8 दहशतगर्द मारजी वया केतरा ही जख्मी थी पया बारूदी मवाद के धमाकन सबब इलाके में मौजूद 3 शहरी भी शहीद थी वया फोर्सिस बलोचिस्तान पुलिस पुजी गजल केरियन से ऑपरेशन किया सिक्योरिटी फोर्सिस के असरायती कार्रवाई दौरान 10 दहशतगर्दन के मारो वो शदीद फायरिंग की डेवट दौरान ब बहादुर जवान पिण जख्मी थी पाया दहशतगर्दी की खातमकत से जारी रखी वी वजीर आजम पर यूथ इम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो ऐलान कर शहबाज शरीफ है पॉलिसी तहत समूरे लेबर फोर्स में औरतों 35 सैकड़ो कोटा होंगी हर साल स्टार्टअप लाइ 10 सैकड़ो कोटा मुक्स कई वी नौजी तकरीब के खिताफिया के बार तैलीम जो बेहतरीन सहूलतू मिली वो गरीब शागिर्दन के तैलीम के मैदान में अगत आंदो पो वे चाहू था बेन मुल्क के मुकाबले पौते न रहूं पैसा फी टोन जाप जो 982 रुपया 89 पैसा फी लीटर मुकर ओगरा के मंजूरी का पेट्रोलियम डिवीजन पारा जारी कल नोटिफिकेशन मौजूद पेट्रोलियम शयन जा

0: कराची में बेदर्द सां कतल थियल मीर अज़ाली खे कर्ज़ ॾींदड़ 10 माण्हुनि जा नाला साम्हूं अची विया। जांच अख़्तियारनि कर्ज़ ॾींदड़ खे पुछा ॻाछा लाइ घुराइण जो फैसलो करे वरितो। जांच ज़रियनि मूजिबि मीर अज़ा 10 ॼणनि खां मजमू तौर 4,58,25,000 रुपया कर्ज़ वरितो। आबिद खां 1,75,00,000, हसन खां 5,60,00,000, हसन खां 48,00,000, उस्मान खां 3,00,000, असद खां 26,00,000, आसिफ़ खां 21,00,000, 75,000 दानिश खां 10,00,000, फर 7,00,000 ऐं मुनी खां 5,00,000 कर्ज़ वरितो वियो। जांच अख़्त मीर रज़ा जे क़तल जा कारण ॼाणण लाइ माली मामलनि समेत सभिनी रुखनि खां जांच कई पई वञे।
1: One shade at a time. With Garnier Color Naturals, you'll get soft V-set break coverage. Long-lasting color to chale 2 mahine tak. Garnier Color
0: Naturals. Kareeb ke kitab kande, Javed Alam ne chayo ta Meer Raza jo qatl afsosnak hai, Polis nahi jaaj team case te kam kar rahi hai. Meer Raza je walidain nahi jaaj te aitmaad jo izhar kiya hai, case mein koi dabav na hai, galat fehmi jo buniyad hui, purani jaaj team khilaf qanoon mujib karwai kai mili. अॻूणे वॾे वज़ीर सैयद क़ाइम अली शाह जी धीअ प्रोफेसर निगत शाह जे रिटायरमेंट बाद 3 सालनि लाइ कॉन्ट्रेक्ट ते मुकरे जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जे जेपीएमसी फैकल्टी में ख़दशा साम्हूं अची विया। फैसले ते नज़रसानी करण, सीनियॉरिटी मेरिट ऐं अहलियत जो मयार बरक़रार रखण जो मुतालबो। वज़ीर आला हाउस जे तर्जुमान जो चवण आहे त निगत शाह जे 3 सालनि लाइ मुकरे पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐं PDMDC तरफ़ां जारी थियल गाइडलाइन तहत निज कॉन्ट्रेक्ट बुनियाद ते कई वई आहे। घड़ी यासीन मेण जे अतल हथियार बंद सख़्त सिक्योरिटी बावजूद शरद कोर्ट जे अॻूणे चीफ जस्टिस आगा रफ़ीक दुरानी जे बंगले ते पेट्रोल बम उछलाए विया। KTN न्यूज़ वाके जा CCTV फुटेज हथ करे वरिता। बुट बदल जवाबदार भित तां बंगले अंदर पेट्रोल बम फिटो करे फरार थी विया। CCTV फुटेज में जवाबदार खे पेट्रोल बम उछलाईंदे ॾिसी सघिजे थो। वाके बाद पुलिस जा अटाला पुछी विया, सिक्योरिटी इंतज़ाम सख़्त कया विया। पंजाब में पीपल्स पार्टी कश्मोर जे नायब सदर आलमगीर समेत 3 ॼणनि जो लाश क़तल केस दाख़िल। आलमगीर खान कोच समेत 3 ॼणनि जे क़तल जो हिते दाख़िल कयो वियो। आलमगीर कोट मीर साहिब कोच में जनाज़े निमाज़ अदा कई वई। DPO रहीम यार खान, इरफान समो सिविल सोसाइटी ऐं ॿियनि जी शिरकत। DPO इरफान मुख जवाबदार कंबो शिमलो ऐं मशहूर कोच समेत ॿियनि खे मुंतक़िद इंजाम ताईं पहुचायो वेंदो।

0: शहदादपुर भरसा अफ़सोसनाक हादसो एम्बुलेंस जे टक्कर में मोटरसाइकिल सवार पोरियत पंज ज़ाल ऐं मासूम नियाणी समेत फौत। बरोड़ रोड ते हादसे सबब पोरियत 40 वीरन जो पोई मौके ते दम डि॒नो। संदसि ज़ाल राणी ऐं 6 वीरन जी धीउ चांदनी अस्पताल में फौत थी वयूं। हिक नारी एमसी ज़ख़्मी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
5: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
6: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: लाहिनाबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक बान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर ट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Dex Ointment.
3: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
4: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yulia Granular Mittiye.
7: पाकिस्तान में मुकर्र ईरानी सफीर रजा अमीरी जी नायब वजीर आजम एसाकदार से मुलाकात बिन तरफन लागापन समेत खिते की सूरतयाल से गालू बिन्हीं अगवान जो खिते की सूरतयाल से राबतन में रहन ते इतफाक एसाकदार चवाए तो पाकिस्तान खिते के अमून इस्तकाम लाए कोशिश जारी रख। ईरान हाँ खिते जो बदमाश ना रो अब नहरमुज से अमेरिका जो मुकम्मिल कंट्रोल है। मानू अमेरिकी बेरिया की नाकाबंदी के लोह की भित कोटे रहा है। ईरान इन लोह भित के कुछ भी नो कर सके। पासदार इनकलाब के भी खत्म कर छो हाँ उ फरार थी रहा है। ईरानी कयादत भी बेयकीनी जो शिकार है। अमेरिकी सदर के नई दावा सामू अची वही। ट्रम्प है तो ईरान वट कूड़ खबर का सवाए कुछ भी ना। महंगाई की शरह 300% है। हालत अजा भी बदतरीन थी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में. डार्क स्पॉट, रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में. डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 11 a.m. This line check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, varam, fauri khatam. Aaj hi karibi store.
2: Sona se hai kamyaab.
3: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
4: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6
0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GFM की आवाज,
2: GFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहती थी। क्या ये सजा है अमन को छोड़ने की?
1: मुझे लगता है तुमसे शादी करके कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया तुमने। मेरी बेबसी और लाचारी की वजह से तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है।

0: मुझे अपनी जितनी सफाई देनी थी ना मैं दे चुकी हूँ। अब अपना सर काट के मैं उनके कदमों में नहीं रखती।
1: तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए।
2: जो रिश्ते सुख देने के बजाय दुख देने लगे उनका टूट जाना ही बेहतर है।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: इन मिट्टी जा रंग रौनकू ए ज़रख़ेज़ी असाजे हारिय साईं ताहिन आबाद हाने इन जो अञाब वधीक मान वधाइण लाइ तवासा गद आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जै जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान बे नाइट्रोजन के देर ताईं दस्तियाबी करे फसल के अञाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए.
3: हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मोरोमी छातीअ जी तकलीफ़, दम या साह ऐं छातीअ जी बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर काशिफ अली बबर MBBS FCPS पल्मोनोलॉजी माहिर अमराज फिफड़ ऐं छाती टीबी नमूनिया कोरोना दम एलर्जी फिफड़नि जो कैंसर सिगरेट नोशीअ खां निजात ऐं वज़न जे वधण मोटापे सबबि पैदा थींदड़ बेचैनीअ जो मुकमल इलाज हिते जदीद तरीन फिफड़नि जी स्पायरोमेट्री टेस्ट जी सहूलियत पिण मौजूद आहे. टाइम हराचर ते सुबुह जो 9 बजे खां मंझंदि 12 बजे ताईं. अपेंडिक्स, गुर्दे जी पथरी, बवासीर, हरनिया ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो माहिर ऐं मशहूर जनरल सर्जन डॉक्टर सलाम खान ज़रदारी MBBS FCP

0: छोड़कर चली गई।
1: मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं कैसे जी रहा था।
2: गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी
3: की। तुम्हारी मेरी बात सुन ले, नहीं तो बहुत पछताएंगे।
4: पछता ही तो रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, पछता रहा हूँ।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: आगे 0300131348 नेक्स्ट कॉलर लेंगे और चेक करेंगे जी कौन और कहां से. साथ साथ आप लोग मुझे मैसेजेस भी सेंड कर रहे हैं, सो मैसेजेस और कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे कमेंट्स. तो हमें फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर दिया है जी हमारी पोस्ट के ऊपर. मोहम्मद अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, कहते हैं सॉन्ग सुनाइएगा तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है. अरे वाह, इत्तेफाक से यही वाला चल रहा है अभी. आओगे जी नेक्स्ट कॉलर. हेलो हेलो हेलो. ओके जी, रेडियो बंद करना भूल गए भाई और रेडियो पे सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, उनकी कॉल लग गई, उनको पता भी नहीं चला. नेक्स्ट कॉलर. हेलो हेलो.
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: भाई मोरो से. भाई
0: मोरो से कौन?
1: सही गली.
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे
1: हैं? प्रोग्राम
0: कौन सा प्रोग्राम है?
1: जिंदगी गुजार.
0: गाना सुनाएंगे?
1: नहीं गाना
0: गाना नहीं सुनाएंगे. फिर क्या सुनाएंगे?
1: बस आप.
0: बस मैं सुना दूं?
1: जी जी.
0: ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. और टाइम भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, सो हम अच्छा सा गाना भी प्ले करेंगे और न्यूज ब्रेक की तरफ भी जाएंगे. मेरे ख्याल से हम इसी के साथ ही न्यूज ब्रेक पे चले जाते हैं. न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक दोनों के बाद वापस आएंगे. वापस आने के बाद हमारा सेगमेंट होगा जी हरा भरा पाकिस्तान, तो उसको सुनना मत भूलिएगा. और उस सेगमेंट में मिलते हैं, जाते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के जाने. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: सिंध की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर, वित्तीय जो मान बधाई।

0: एहतसाब अदालतन खां एंटी करप्शन कोर्ट्स मुतलिक थियल केसिस ते ॿीहर एहतसाब अदालतन में कार्रवाई शुरू। नए प्रोसिक्यूटर जी दरख्वास्त ते एहतसाब अदालत 15 रेफरेंसिस ते कार्रवाई शुरू करे छॾी। ज़मीन जे गैर कानूनी अलाटमेंट ऐं करप्शन केस में बलूचिस्तान जे अॻूणे वज़ीर अली हसन बिरोही ऐं अॻूणे चीफ सेक्रेटरी सदीक मेमण खे नोटिस जारी करे छॾिया। मलीर जो अॻूणो डीसी काज़ी जान मोहम्मद एजाज़ हुसैन अब्दुल कादिर मेमण गुलाम मुस्तफ़ा मोहम्मद मूसा काज़मी अब्दुल लतीफ़ कोसो खे बि पेश थियण जो हुकुम। तपेदार निसार वगुण अली असगर महेंद्रो खे बि नोटिस जारी कयो वियो। अॻूणे मुख़्तियारकार इक़बाल अहमान मोहम्मद हनीफ़ ऐं ॿियनि खे नोटिस जारी। मुल्क में बिजली जे वापेदारनि लाइ बिजली लगातार 3 महीननि ताईं महांगी थियण जो इम्कान। 3 माही एडजस्टमेंट जे मद में बिजली फी यूनिट 1.34 रुपए महांगे थियण जो इम्कान। नेपरा बिजली विरिहाईंदड़ कंपनीज़ जी दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो वापेदारनि ते।
1: अरे आगे
2: खड्डा।

0: सारे दिन पीर की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो।

0: It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम.
3: हाँ अवां जे पांजे शहर मोरू में छाती जी तकलीफ है. दम या साह छाती जी बीमारियों जो माहिर डॉक्टर काशिफ अली बबर MBBS FCPS पल्मोनोलॉजी माहिर अमराज फिफड़ छाती टीबी नमूनिया कोरोना दम एलर्जी फिफड़न जो कैंसर सिगरेट नोशी का निजात वजन जे वधन मोटापे सबब पैदा थन्दड़ बेचैनी जो मुकम्मल इलाज हिते जदीद तरीन फिफड़न जी स्पायरोमेट्री टेस्ट जी सहूलत पिण मौजूद है. टाइम हराचर ते सुबुह जो 9 बजे का मंझंद 12 बजे ताई. अपेंडिक्स गुर्दे जी पथरी बवासीर हरनिया बिन बीमारियों जो माहिर मशहूर जनरल सर्जन डॉक्टर सलाम खान जरदारी MBBS FCPS असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन. अपेंडिक्स गुर्दे जी पथरी बवासीर हरनिया बिन बीमारियों जो ऑपरेशन जदीद तरीके से कया वन था. टाइम हर आचर से सुबुह 9 वगे का मछंद 1 वगे ताई. एड्रेस दस्तगीर आर्थोपेडिक एंड ट्रामा कॉम्प्लेक्स बांदी रोड मोरो. हाँ राबतो करो सैयद गुलाम मुर्तजा शाह एडमिनिस्ट्रेटर 0321 82 84 594 0304 037 3081.
0: अगर खूबसूरती खपे तो आर्च अपनायो. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा एवोकाडो अवां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर का रिपेयर करे सिर्फ 3 दिन में. डार्क स्पॉट्स एक्नी स्कार्स घटाए स्किन के बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग दिए शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक निखार जो बेहतरीन इंतखाब. आर्च ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड.
3: जश्न आज़ादी मुबारक जी एमओरो FM 88 पेश करे तो पांजे लिसनर्स क्लाइंट्स अवाम जे लाए जश्न आज़ादी जे मौके ते खुसूसी पैकेज. तहानी कॉल करे बुकिंग करायो. राते जे लाए गुलाब खान बिण 0300-2165-842.
0: दीह जे गरम तरीन वक्तन ते सुबह 11 वगे खां शाम 3 वगे ताई बाहर निकरण खां परहेज करियो. जोर बार वारे कम खां पासो करियो. सख्त गर्मी उस समय पांजो मथो ढके रखो. गर्मी जे दौरान छटरी ट्वाल पानी लीमो पानी पान सा गड रखो. शदीद उस समय बाहर रांद रूंद करण खां पासो करियो. ही पैगाम PDMA सिंध जिले इंतजामिया दादू स्टार्ट नेटवर्क हेंड्स RDF पारा पेश कयो वयो आहे.
3: खुशखबरी एक रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप तारीख 15 अगस्त 2026 बरूज छंछर ते सुबह 9 वगे का मंझंद 2 वगे तई जहांगीर मेडिकल सेंटर दादू चौक मोरूमी लगी रही है. जैमी कराची जी मशहूर चमड़ी जी बीमारियों जी माहिर डॉक्टर सहरिश बोयो MBBS RMP डी ड्रम मरीजन जो इलाज कंदी. कैंप में मुफ्त मुआइनो चेकअप मुफ्त मशोरो मुफ्त दवाओं दिनों विंदियों. हंध जहांगीर मेडिकल सेंटर दादू चौक मोरो भर पासे के अवाम के इतलाव तो कजे तो मुफ्त मेडिकल कैंप मां फायदो वठे. राबते मालूमात के लिए इन नंबर से राबतो कंदा 0302-32-10-630 0304-34-63-463.
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रो बीज फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो.
3: असां 14 अगस्त जश्न आज़ादीअ जे पुरमुसरत मौके ते सिंध जे तालीम वारे वज़ीर जनाब सैयद सरदार अली शाह साहब, तालीम खाते जे तमाम सरकारी तोड़े खानगी आला अमलदारनि, सनशाइन पब्लिक स्कूल फुल जे प्रिंसिपल आफ़ाक हैदर जोखियो, सभिनी उस्ताद साहिबान, स्कूल में पढ़ंदड़ ॿारनि ऐं उन्हनि जे वालदेन समेत तमाम अहले वतन खे दिल्ली तौरु मुबारकबाद पेश कंदे मुल्क जी तरक़ी खुशहालीअ जे लाइ दुआगो आहियूं। पारां ज़ाहिद हुसैन फुल, एडमिनिस्ट्रेटर सनशाइन पब्लिक स्कूल फुल, जंहिं हिन पुरमुसरत मौके ते पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त सनशाइन पब्लिक स्कूल फुल में दाख़िलाऊं जारी आहिनि। अवां जे ॿारनि जे रोशन मुस्तक़बिल जो ज़ामिन इदारो हमेशह जीअं तालीम जे मैदान में अॻे खां अॻ भरो, बहितरीन क़ाबिले एतमाद तजुर्बेकार ऐं आला तालीम याफ़्ता उस्तादनि जे निगरानीअ में हर मज़मून जदीद अंदाज़ में पढ़ायो वञे थो। पंहिंजे ॿारनि जे बहितरीन तालीम जे लाइ असांजे स्कूल ज़रूरु विज़िट करियो।
4: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. आपको मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में कॉल्स मैसेजेस और कमेंट्स के थ्रू अब और साथ साथ कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ मूव करेंगे. जिन लोगों ने हमें बहुत सारी कमेंट्स कर दिए हैं और बहुत सारे मैसेजेस कर दिए हैं उन लोगों के कमेंट्स उन लोगों के मैसेजेस

0: ओके जी, बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के, और गाना चेंज कर दिया है
1: याद तेरी सीने।
0: ओके, हमें मैसेज किया है जी, अस्सलाम वालेकुम, सिंध की आवाज आरजी रुखसार, नाइस शो है, नाइस शो होता है। दो बार कॉल पिक किया आपने, मेरी आवाज आपको नहीं आई, मेरी आपको आ रही थी, नहीं आ रही थी, आपको मेरी आ रही होगी। आप ऐसा किया करें कि जब आप कॉल किया करें ना, तो हेडफोन्स वगैरह निकाल दिया करें, ठीक है, इससे आपकी आवाज साफ आएगी और आएगी। आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी आवाज आ रही है लेकिन नहीं आती, तो मेक श्योर जब भी आप कॉल करें किसी ऐसी जगह पे जाके कॉल करें जहाँ पे प्रॉपर सिग्नल्स आ रहे हो, जहाँ पे आप इजीली कंफर्टेबल होके बात कर सकते हो, ठीक है। तीसरी बात ये कि हेडफोन्स वगैरह जो लगाए होते हैं आपने, वो निकाल दिया करें कॉल करने के टाइम पे, ठीक है।

0: Okay, caller in line pe hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, kaun kahan se?
1: Aafir rehta wala baat kar raha hu sir.
0: Pehli dafa call kar rahe?
1: Nahi nahi, kaafi dafa ki hai, lekin aap bhul jate ho.
0: मैं भूल जाती हूँ, बस क्या करूँ, ये भूलने की बीमारी लग गई है और बस उम्र का तकाजा है. सबकी इतनी है भी नहीं. अच्छा मुझे ये बताएं कि हाँ प्रोग्राम सुन रहे हैं
1: जी.
0: तो कैसा लगता है प्रोग्राम? कॉल ही काट दी. वेरी बैड.

0: दीजिए सक्कर FM 88
1: सक्कर की आवाज।
2: जो ख्वाब आए
1: तफरी से रिश्ता जोड़ो, सुनते रहो जी
3: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास। जीए FM की आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: होगी 11 से लेकर 1 बजे तक आजादी स्पेशल ट्रांसमिशन, जिसमें आप मुझे सुनना मत भूलिएगा सेम टाइमिंग में, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते वही बात के ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी होता है। लव सम पर थिंक हाई आर जी रुखसार साइंस आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज।
1: Good cheese again, fine, gotta make that gift.

0: शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.1 फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
2: सर हिफाजत
3: जी सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
4: सिंध हाईकोर्ट CCJ मां तहत वलीका अस्पताल मां छावी पखिड़जण वारे केस में जांच करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। चीफ सेक्रेटरी जी सरबराही में जांच कमेटी जोड़ण जो अदालत चयो त 20 ग्रेड जे अहिड़नि अमलदारनि खे शामिल कयो वञे जंहिं जो अस्पताल जे जांच सां तालुक न अलकरीम मेमन गुल इंतज़ामी नोयत जो न आहे। ही मामलो ज़िंदगी ऐं अवामी सिहत बाबति ज़िमेवारनि जो आहे। कादरपुर वेझो कारे मामले जो जरगो 15 वरन जो नीगर कारो करार 16 लख रुपया डंड मुकरर वडाणी जे बासर वडेरे रही सताउला भुट्टो जी सरपंची हेठ कारे इल्ज़ाम जो जरगो थियो। 15 वरे 16 लख डंड विधो वियो। नीगर जे वालिद यासिन भुट्टो जो चवण आहे त पुट ते कारे जो इल्ज़ाम हणी 16 लख डंड विधो वियो आहे। ज़मीन ऐं घर ते कब्ज़ो कयो वियो आहे। जरगे जो नोटिस वठी घर ऐं ज़मीन ते कब्ज़े ख़िलाफ़ कारवाई कनि। दोदापुर वेझो टिन शाखनि खे घारा केतिरा ई फसल पाणी हेठ बेगारी केनाल खे ॻोठ पीर बख़्श बुलेदी ऐं मौला बख़्श माली वटां ॿ घारा लॻा। कोटली शाह खे 15 फुट ऐं ताज़ा शाह खे 30 पइजी वियो। शाखनि खे ॿोड़ींदो ॻोठनि ॾांहुं सेठ खां लॻ ढोरे शाख में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो। आबादगारनि ऐं शहरनि गवादर मोटरवे खे ट्रेक्टर ट्रालियुनि सां बंदि कयो। सदन चवण आहे त सिंधु दरिया में ॿोड़ वारी सूरतहाल मौजूदु आहे पर ढोरे शाख में पाणी नाहे। पाणीअ जी खोट सबबि फसलनि ऐं आबादगारनि जी मुआशी सूरतहाल ते सख़्त असर पइजी रहियो आहे।

14 अगस्त सां पंहिंजे क़ौम सां पंहिंजे वतन आहियूं। असां 14 अगस्त पंहिंजे ॿारनि सां गॾु ऐं पंहिंजे सिंध वासियुनि सां गॾु पूरे पाकिस्तान

0: सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न आज़ादी मल्हाइण जूं तयारियूं जारी। सिंध जे नंढनि वॾनि शहरनि में क़ौमी झंडनि जी बहार, रैलियुनि ऐं तक़रीबनि जो सिलसिलो जारी आहे। यूरोप समेत दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में ॾींहं जे वक़्त राति थी वई। स्पेन, ग्रीनलैंड, आइसलैंड ऐं रूस में मुकमल सिज ग्रहण, बरतानिया, फ्रांस ऐं ॿियनि यूरोपी मुल्कनि में जुज़वी सिज ग्रहण थियो। 1999 बाद थियल सिज ग्रहण खे लखे माण्हुनि पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो। राति हुअण सबबि पाकिस्तान में सिज ग्रहण जो मंज़र नज़र न आयो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
4: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
5: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
4: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जानती नहीं हो जुबीन, तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम जब साथ होती हो ना तो दिल करता है कि हर वक्त बस फूलों की बारिश होती है। हमेशा के लिए तुम्हें इस मोहब्बत के रिश्ते में कैद करना चाहता हूँ,
1: लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ।

0: अप्रैल से जुमे की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: देखिए सवाले इश्क, सुनहरी तितलियाँ और अपने फेवरेट टर्किश ड्रामास ड्रामा सेंट्रल के यूट्यूब चैनल पे।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
4: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
5: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
6: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
7: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

हबीबगंज जी अदालत में कोर्ट लालू भरसा मुबैना पुलिस मुकाबले में मारजी वयल टिन नौजवान वारे केस जी बुधनी अदालत बिन केस की जांच एफआईए डां मुंतकिल करण जो हुक्म दई छो। अदालत धरन बाद पुलिस मुकाबले पुलिस कल केस जी एफआईए हवाले करण जो हुक्म दिनो। सिंध के मुख्तलिफ शहर में पानी के कोर्ट खिलाफ आबादगार मुजाहरा धरना। मीरपुर भठोरो तालके में पानी कोर्ट खिलाफ आबादगार शहर जो एहतजाज। सजावल रोड से धरणो छण जो मुतालबो। डाक में पानी कोर्ट खिलाफ मोटरवे से ट्रैक्टर ट्रालन से बंद किया। आबादगार है सिंधु के पोए भी शाख में पानी ना डोरे शाख में पानी छो वे। दोदापुर हेठ वेगारी के बख्श बुलेट जमाली वटा बघारा लगा। कोटड़ी शाख के 15-30 फुटन जो घारो पैजी वयो। शाखन के घारा पवण करे पानी फसल के बोड़ींदो गोठन डां वधण लगो। सिंधड़ी वेझो केनाल में बुडी वियल नींगरी आमना शहर जो लाश टे ॾींहं गुजरण बावजूद हथ न आयो। वारसनि जो इंतजाम जी बेहिसी खिलाफ़ एहतजाज। नींगरी जे लाश जी ॻोल्हा में मदद करण जो मुतालबो। मुजाहिरीन चयो त नींगरी जो लाश ॻोल्हण में इंतजामिया मदद न करे रही आहे। नोटिस वरितो वञे। कादरपुर वेझो कारे मामले जो जरगो। 15 वरन जो नींगर कारो करार। 16 लख रुपया डंड मुकरर। वडाणी जे बासर वडेरे रही सताउला भुटो जी 15 वरन जे स्कूली शागिर्द शहबाज भुटो मथां कारे जो इल्ज़ाम डंड विधो वियो। नींगर जे वालिद यासीन भुटो जो चवण आहे त पुट ते कारे जो इल्ज़ाम हणी 16 लख डंड विधो वियो। ज़मीन ऐं घर ते कब्ज़ो कयो वियो आहे। जरगे जो नोटिस वठी घर ऐं ज़मीन ते कब्ज़े ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे।

केटीएन न्यूज़ जे शहीद साफी जान मोहम्मद महर जी अजटी वर्सी चक में शहीद जान मोहम्मद जी मज़ार ते माइटन ऐं कलमदारनि जी हाज़िरी टे साल गुज़रण बावजूद कतल केस जा मुख्य जवाबदार कानून जी पकड़ खां आजा। सिंध हुकूमत जे वायदनि बावजूद शहीद जे खून सां इंसाफ़ न थी सघियो। छह जवाबदार बख्शल महर, बाबर बशीर, मुनवर महर, रमज़ान शेख ऐं ॿिया ज़मानत ते आज़ाद थियल मुख्य जवाबदारनि जुम्मन महर, गुलज़ार, नसीर, रोशन, मोहसिन महर ऐं ॿिया गिरफ़्तारी न थिया। शहीद जान मोहम्मद जा वारिस ऐं कलमदारनि खे इंसाफ़ जो इंतज़ारु।

0: जारी नवाबशाह कंतोर खैरपुर खैबर अठ अठ मोरी मेहड़ मुबारकपुर ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं मीरपुर भठोरो मदेजी मनोड़ो चक बान सईदाबाद नसीरपुर उरेरो लाल ऐं ॿियनि शहरनि जे स्कूलनि ऐं कॉलेजेस में तकरीबूं शागिर्दनि पारां टेबलोज़ पेश क़ौमी गीतनि ते रक़्स बि कयो वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: जा रंग रौनकू ऐं ज़राहिन आबाद हाणे इन जो अञा बि वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु हलण जदीद तयार कयल आला मयना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें, शुमार कीमती इनाम।
5: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की महमरती
6: गांव में रची बन के मोहब्बत का सास की आवाज
5: GAFM सिंध की आवाज़।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं ये इनाम।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

शहरनि जे एतिजाज चावल रोड ते धरणो शाखरनि जो धरणो ट्रैक्टर ट्रालियुनि सां बंदि कयो डोरे शाख जे पुछड़ी ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो रोड़ी में काज़ीबाह जे पुछड़ी में पाणी खोट लाफ़ाबाद करण जो एतिजाज पाणी ॾेई फसल बचाइण जो मुतालबो सिंधड़ी वेझो कैनाल में ॿुॾी वियल नींगरी आमणा शहर जो लाश टे ॾींहं गुज़रण बावजूद हथ न आयो वारसनि जो इंतिज़ामिया जी बहस ख़िलाफ़ एतिजाज नींगरीअ जे लाश जी ॻोल्हा में मदद करण जो मुतालबो मुज़ाहिरीन चयो त नींगरी जो लाश ॻोल्हण में इंतिज़ामिया मदद न करे रही आहे नोटिस वरितो वञे।

0: सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न आज़ादी मल्हाइण जूं तयारियूं जारी। सिंध जे नंढनि वॾनि शहरनि में क़ौमी झंडनि जी बहार, रैलियुनि ऐं तक़रीबनि जो सिलसिलो जारी। नवाबशाह, कंकोट, खैरपुर, खैबर, अठहठ, मोरी, नेहड़, मुबारकपुर ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं। मीरपुर, भटोरो, मदेजी, मनभान, सैदाबाद, नसीरपुर, उडेरो लाल ऐं ॿियनि शहरनि जे स्कूलनि में पेश क़ौमी गीतनि ते रक़्स बि कयो वियो। जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि स्पेन, ग्रीनलैंड, आयूस में मुकमल सिज गिरण, बरतानिया, फ्रांस ऐं ॿियनि यूरोपी मुल्कनि में जुज़वी सिज गिरण थियो। 1999 बाद थियल सिज गिरण खे लखे माण्हुनि पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो। राति हुअण सबबि पाकिस्तान में सिज गिरण जो मंज़र नज़र न आयो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
4: इन मिट्टी जा रंग, रौनकू ए जरखेजी असाजे हारिय साई ताहिन आबाद। हाने इन जो अन्याब वधीक मान वधायण लाए तवा सा गड आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर। जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जै जो मोतिये जड़ो दाणो छटाई करण में आसान, बे नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अन्याब शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
6: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
7: जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: से हिट। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क। अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अफरीदी अगो ने एसएचओ गुलिस्तान जो कामरान कुरैशी के तलब करे वरतो। फैज़गंज की अदालत में कोर्ट लालू भरसा मुबैना पुलिस मुकाबले में मारजी वन टिन नौजवान वारे केस की बुधनी अदालत बिन केस की जांच एफआईए डां मुंतकिल करण जो हुकुम दई छोड़ो। अदालत धुरन जा दलील बुधन बाद पुलिस मुकाबले वारसन पारा पुलिस खिलाफ हुकुम दिनों।

सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पाणीअ जे खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जा मुज़ाहिरा ऐं धरणा। मीरपुर बठोरो तालुके में पाणीअ जे खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि ऐं शहरनि जो एहतजाज। सिदावल रोड ते धरणो, शाखनि ऐं वाहन में पाणी छोड़ करण जो मुतालबो। सुबुह सत खां लॻ ढोरे शाख में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो। आबादगारनि ऐं शहरनि गवादर मोटरवे खे ट्रक ट्रालियुनि सां बंदि कयो। ढोरे शाख जे पुछड़ी ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। रोड़ी में काज़ीबाग जे पुछड़ीअ में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। पाणी ॾेई फसल बचाइण जो मुतालबो। सिंध असेंबली जो अॻूणो मेंबर गुलाम रसूल उनड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शिकार। अॻूणी ज़ाल ख़िलाफ़ केस दाख़िल कराइण लाइ कराची जी अदालत पहुची वियो। औरत ते एआई ज़रिए ठाहियल तस्वीरुनि मोकिलण जो इल्ज़ाम। तलाक बाद धमकाइण ऐं पैसा घुरण जो बि इल्ज़ाम लॻायो। अदालत एसपी कंप्लेंट सेल ऐं एसएचओ डिफेंस खे नोटिस जारी करे छॾिया। 17 अगस्त ताईं रिपोर्ट तलब। गुलाम रसूल उनड़ दरख़्वास्त में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त सोशल मीडिया ते औरत सां ॻाल्हि ॿोल थी वीडियो कॉल ज़रिए निकाह कयो। चहिरो ॾेखारण लाइ चयो त एआई ज़रिए ठाहियल तस्वीरूं शेयर कंदी हुई। वकील आमिर वड़ाए चयो त गुलाम रसूल उनड़ खे अॻूणी ज़ाल धमकाए ऐं पैसा घुरी रही आहे।

0: केटी न्यूज जे शहीद साफी जान मोहम्मद मर जी अॼु टी वर्सी चक में शहीद जान मोहम्मद जी मज़ार ते माइटनि ऐं कलमदारनि जी हाज़िरी ते साल गुज़रण बावजूद क़तल केस जा मुख्य जवाबदार कानून जी पकड़ खां आजाद। सिंध हुकूमत जे वाइदनि बावजूद शहीद जे खून सां इंसाफ़ न थी सघियो। छह जवाबदार बख्शल महर, बाबर बशीर, मुनवर महर, रमज़ान शेख ऐं ॿिया ज़मानत ते आज़ाद थियल। मुख्य जवाबदार जुमन महर, गुलज़ार नसीर, रोशन मोहसिन महर ऐं ॿिया गिरफ़्तारी न थिया। शहीद जान मोहम्मद जा वारिस ऐं कलमदड़नि खे इंसाफ़ जो इंतज़ार।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: सुबह की चाय।

जिस धरती बनी है अब FM नेटवर्क की आवाज। या ट्रैफिक हची FM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर
1: ला खित्ते की बनी
0: जीए एफएम नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज एफएम आवाज।
1: चाय याम जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
2: अपना

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये अपना वाइब सेट है
4: GFM, द बेस्ट।
5: ये FM, FM।
0: जिस धरती साज
1: कीपर्क सिन
3: और ढेर आपका सच,
0: जिस धरती से जुड़ंदर लाल शहबाज,
1: खित्ते की बनी है आवाज।
0: GFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर
3: मुलाकात सां 8 बजे पढ़ाई वजे जी मुलाकात बतरफ़ान लागापन समेत खत्ते जी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। नॉर्वे जे पढ़ाई वज़ीर पारां खत्ते में अमन लाइ पाकिस्तानी कोशिशुनि जी हिमायत। नॉर्वे जे पढ़ाई वज़ीर एस्मिन वार्त एडी चयो आहे त खत्ते जी मौजूदा सूरत हाल आलमी मईशत लाइ ख़तरो बणियल आहे। आलमी अमन लाइ पाकिस्तान जूं कोशिशूं सारा जोगियूं आहिनि। सागरा चयो त पाकिस्तान नॉर्वे सां दोस्ताना लागापा वधीक मुस्तहकम करण जो ख़्वाहिशमंद आहे। अदालतन खां एंटी करप्शन कोर्ट्स मुंतकिल कयल केसिस ते बीहर एहतसाब। अदालतन में कार्रवाई शुरू। लेफ प्रोसिक्यूटर जी दरख़्वास्त ते कार्रवाई शुरू करे छॾी। ज़मीन जे गैर क़ानूनी अलाटमेंट ऐं करप्शन केस में बलूचिस्तान जे अॻूणे वज़ीर अली हसन गिरोही ऐं अॻूणे चीफ सेक्रेटरी सदीक मेमण खे नोटिस जारी। मलीर जो अॻूणो डीसी काज़ी जान मोहम्मद, एजाज़ हुसैन, अब्दुल कादिर मेमण, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद मूसा काज़मी, अब्दुल लतीफ़ खोसो खे बि पेश थियण जो हुकुम। तपेदार निसार वगण, अली असगर महेंद्रो खे बि नोटिस जारी कयो वियो। अॻूणे मुख़्तियारकार इक़बाल अवाण, मोहम्मद हनीफ़ ऐं ॿियनि खे नोटिस जारी कयो।

ॿارن खे जल्द आज़ाद करे। आज़ाद कश्मीर पुलिस जे तर्जुमान SSP खावर अली शौकत चयो आहे त रियासती रिट खे चैलेंज कयो वियो, अहलकारनि खे तशदुद जो निशानो बणायो वियो, औरतुनि खे ढाल तौर इस्तेमालु कयो वियो। रियासत न पहिरीं कमज़ोर हुई न हाणे आहे, निज़ाम महफ़ूज़ करण जी कोशिश थी त रियासत ज़िमेवारी पूरी कंदी। सिंध हाई कोर्ट सेसी जे मातहत वलीका अस्पताल मां HIV पकड़जण वारे केस में जांच करण जो हुकम ॾेई छॾियो। चीफ सेक्रेटरी जी सरबराही में जांच कमेटी जोड़ण जो हुकम। अदालत चयो त जांच कमेटी में 20 ग्रेड जे अहिड़नि अमलदारनि खे शामिल कयो वञे जंहिंजो अस्पताल या जांच सां तालुक न हुजे। जस्टिस अदनान अल करीम मेमण चयो आहे त ही मामिलो इंतज़ामी नोयत जो नाहे, ही मामिलो ज़िंदगी ऐं अवाम पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इतिहाद जूं वफ़ाकी वज़ीर ऐं सिंध हुकूमत जे नुमाइंदनि सां ॻाल्हियूं नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्ट इतिहाद जे 6 ॾींहं बि मुल्क गीर हड़ताल जारी। गुड्स ट्रांसपोर्ट मलिक शहज़ाद अवाण चयो आहे त वफ़ाकी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत असांजा मसला हल करण में संजीदा न आहिनि, मुतालबनि जी मंज़ूरी ताईं हड़ताल जारी रहंदी। जे अदालत में कोर्ट टालू भरिसां मुबैना पुलिस मुक़ाबले में मारिजी वियल टिनि नौजवाननि वारे केस जी ॿुधणी। अदालत ॿिनि केस जी जांच FIA ॾांहुं मुंतकिल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अदालत उन्हनि जा दलील ॿुधण बाद पुलिस मुक़ाबले ऐं वारिसनि पारां पुलिस ख़िलाफ़ दाख़िल करायल केस जी FIA हवाले करण जो हुकुम ॾिनो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पाणीअ जी कोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जा मुज़ाहिरा ऐं धरणा। मीरपुर वठोरो तालुके में पाणी कोट ख़िलाफ़ आबादगारनि ऐं शहरीनि जो एहतजाज। सजावल रोड ते धरणो, शाखनि ऐं वाहन में पाणी छोड़ करण जो मुतालबो। उबो सईद ख़ान लॻ ढोरे शाख में पाणी कोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो। आबादगारनि ऐं शहरीनि गवादर मोटरवे खे ट्रैक्टर ट्रालियुनि सां बंदि कयो जे पुछड़ ताईं पाणी पहुचण जो मुतालबो। रोहड़ी में काज़ीबाग जी पुछड़ी में पाणी कोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। पाणी ॾेई फसल बचाइण जो मुतालबो।

0: जिन समय से समूरे मुल्क में जश्न आजादी मल्हाइण जूं तैयारियूं जारी। सिंध जे नंढनि वॾनि शहरनि में क़ौमी झंडनि जी बहार, रैलियुनि ऐं तक़रीबनि जो सिलसिलो जारी। नवाबशाह, कंदकोट, खैरपुर, खैबर, अठटमोरी, मेहड़, मुबारकपुर ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं। मीरपुर, बटोरो, मदेजी, मनड़ो, चकभान, सईदाबाद, नसरपुर, डेरोलाल ऐं ॿियनि शहरनि जे स्कूलनि ऐं कॉलेजेस में तक़रीबूं। शागिर्दनि पारां टेबलोस पेश, क़ौमी गीतनि ते रक़्स बि कयो वियो।
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अपना शहर, अपना घर, मठियारी और मठियारी की आवाज
4: GAFM 91.6।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर दिन पीर की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रर डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।

0: अप्रैल से जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए सवाले इश्क, सुनहरी तितलियाँ और अपने फेवरेट टर्किश ड्रामास ड्रामा सेंट्रल के यूट्यूब चैनल पे।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: दस तक देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल छुप छुप के फर्स्ट रमजान से रोजाना रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल हमराही 27 मार्च से जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: का सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी 12 जनवरी से सिर्फ प्री एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, हकमतियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: तहजीब और सकाफत से सजी मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है के मोहब्बत का साज। FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: GAFM की आवाज,
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा।

0: परवरिश देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
4: भाई हमने तो ये देखा है कि लड़कियों की जिस जगह शादी होती है उस घर को वो जन्नत बना दे।
5: जाओ जी सब तैयार, ये घराना है शाहकार, लाए

0: सास की चौकी पड़ी होगी और लोग कह रहे होंगे मरहुआ बहुत ही खबीस खातून थी।
1: प्यार परिंदा फड़फड़ करके फुर से यूं उड़ जाए, जो कहते थे वाह वाह उनको अब कहते हैं।

ईरान अमरीका जे अपनाए हुर्मुज़ ते कंट्रोल वारी दावा के रद्द करे छो इंसानियत कंद वारे मामले ते यूरोपी मुल्क भी मुनाफिक करार ईरानी परडेही वजीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ईरान खिलाफ जंग अमरीकी इंटेलिजेंस जी वरी नाकामी जो खुलियल सबूत आहे अपनाए हुर्मुज़ बाबति भी अमरीका ग़लति अंदाज़ा लॻाए रहियो आहे ईरान खिलाफ जारियत जी हिमायत करे यूरोपी यूनियन अख़लाक़ी हैसियत वञी चुकी आहे ईरानी बसिज फोर्स जे सरबराह हुसैन ताइब चयो आहे त अपनाए हुर्मुज़ अमरीका इन पर ईरान जो मुकमल कंट्रोल हेठि आहे ईरान सां जंग मां बेज़ार अमरीकी फौजी आफ़ात जूं कोशिशूं करण लॻा जहाज बरदार अमरीकी जंगी बेड़े इब्राहिम लंकन ते मौजूद अहलकारनि पारां समुंड में टपो ॾियण जूं कोशिशूं अमरीकी मीडिया मूजिब जहाज जे हमले केतरनि फौजियुनि खे समुंड में टपो ॾियण खां रोकियो आहे जंगी बेड़े ते खाद खुराक जा बि मसला आहिनि अमरीकी सेनेटर्स मीडिया रिपोर्ट ते जांच करण जो मुतालबा करे छॾियो आहे जहाज ते 5000 खां वधीक अहलकार मुक़रर आहिनि

कराची जी अदालत मलेशिया के टिन केसन में कुकियन क्वीन अनमोल और पिंकी के परी कर छो इन के खिलाफ केस की बुधनी कराची रखने की अदालत पे थी। अदालत अनमोल और पिंकी की बरीयत वाली दरख्वास्त मंजूर कर केस बरी कर छो। वकील मूजिब मनशियात केस में जवाबदार अगे बरी थी चुका है। अनमोल और पिंकी के शरीक जवाबदार अली और फहमीदा के बयान की बुनियाद केस में शामिल किया हो। केस में सजा जो इम्कान न है। अदालत वकील जा दलील बुधण बाद अनमोल और पिंकी के तिन्ही केसेस में परी कर छो। कुकी एंड क्वीन पिंकी के गार्डन पुलिस कुछ महीना पहले गिरफ्तार किया हुआ।

श्रीनगर वज़ीर ज़ियाल हसन नज़ार आई जी जावेद आलामोडो बियन जी शिरकत ज़ियाल हसन नज़ार बुधायो तो सिंध में दहशतगर्दी के वाक़िअनि में नुमाया घटताई आई है। मीरजा के ऐसी जांच लाए जोड़ियल कमेटी के सरबराह डीआईजी आमिर फारूकी पारा टीम से गड़ी क्राइम सीन जो दौर जांच कमेटी क्राइम सीन का मीर रजा के रधणे ताई आखिरी सीसीटीवी फुटेज वाले हंध जो जायजो वरतो। कमेटी सरबराह मीर रजा के रधणे अंदर वनी मायने अमले से गाल बोल का वापस क्राइम सीन पहुंतो। कमेटी क्राइम सीन भरसा मिट्टी तेजाब जो बोतलू पिण हासिल कई। मीरजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद जिमकानी गिरफ्तारी का जमानत मंजूर। सेशन अदालत 1,00,000 रूपये एवज मोहम्मद अहमद की पूरी जमानत मंजूर करते पुलिस के संदस गिरफ्तारी का रोके छो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GAFM 91.6।

0: मिर्जा की हीर देखिए 8 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो। मेरी जिंदगी है तू,
1: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
2: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
0: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अगर अब्बू मुझे पैसे नहीं दे सकते, मुझे कुछ दे नहीं सकते, तो एटलीस्ट वो मेरी चीजें चोरी तो नहीं करें।
1: डरो।

0: अफील देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज की आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91 आवाज।
1: सिंध की महधरती,
2: जिसकी फजाओं में है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।

जगड़ी हूँ बची हूँ सिंध समेत समूरे मुल्क में दुश्मन आज़ादी की तैयारी मुकम्मल। सिंध के नंढनि वॾनि शहरनि में क़ौमी झंडनि जी बहार। कराची ऐं हैदराबाद समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि में वॾनि इमारतनि खे रंग बिरंगी लाइट सां सजायो वियो। नॉर्वे जे परडे॒ही वज़ीर जूं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़, नायब वज़ीर आज़म सागदार ऐं फील्ड मार्शल शहज़ाद सुमरी सां अलॻि अलॻि मुलाक़ातूं। तरफ़ा लाॻापन समेत ख़ते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते तफ़ाक़। नॉर्वे जे परडे॒ही वज़ीर पारां आईएसटीआर मूजिबि नॉर्वे जे परडे॒ही वज़ीर

अधिकारी छोड़ो इंसानी हकन वाले मामले करार। ईरानी बड़े वजीर अब्बास इराकची चयो है तो ईरान खिलाफ जंग अमरीकी इंटेलिजेंस होता है। अमरीका गलत अंदाज ईरान खिलाफ जारियत की हिमायत करे यूरोपीय यूनियन अखलाकी हैसियत विञाए चुकी है। ईरानी वसीत फोर्स की सरबरा हुसैन चयो है तो अपना हुर्मुज अमरीका न पर ईरान के मुकम्मल कंट्रोल हेठ है। पिंकी की मजमूई तौर 25 टाइगर की सुणप मुकम्मल। केस में 10 मानू चालान थी चुका पर जणा सोशल मीडिया ए मालियात अकाउंट्स हलाईंदा हुआ। कराची में आके मशियात नेटवर्क जो घरू मामलन वाली स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में एडिशनल आई जी कराची आजाद खान की कें भी सूरत में तवा सा को राबतो कयो अलजोती नवाल सा को भी राबतो किए जे एक अकाउंट साल दौरान 3 करोड़ डेटा सामू अकाउंट जांच लाए जुड़ियल कमेटी के सचिव गठी कराची रतने की भी फोटेजेस वाले हंध जो जायजो वापस क्राइम सीन हासिल कई बिजनेस पार्टनर जिमकानी गिरगर